0: हंगार
1: अंगार दो मेंदुर कोरी एकार गड़ फना रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूँ आदि बुद्ध दो होकेरे मेंदमो बार गड़ तेरी हूँ
0: हंगार
2: हमें कनी दिवे ही राज्य क्या डूं

ड्रामा खुड़म का बैरवी, मोहम्मद रमीज, अयशत नईमा, अयशत जाया मूसा, यूसुफ अब्दुल्ला हारिस, नवार बिन जुबैर, अदि अयशत फिना फिराक,

0: हंगार
1: अंगार दो मेंदुल कोरी इकार गड़ फना रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूँ आदि बुद्ध दो हो केरे मेंदमो बार गड़ तेरी हूँ
0: हंगार
2: हम एकने दिवे राज्य के अड़ू
3: ගඩින් ෆතිහ හතරිච්චෙහි මේ දිවෙහි රාජ්‍යයේ ගඩෝ